हुई नहीं सुबह और रोशनी हुई जरूर है, सोती जब दुनिया यहां जागने का दस्तूर है। यहां चलता नहीं है कोई, बस भाग रहे सारे। और जो रुक गया उसका जीना फिजूल है।

साला ये शहर भी अजीब है, जन्नत से दूर और मन्नत के करीब है, मानता मेहनत और चलता सिर्फ नसीब है।

ऐसा कौन है जिसको मेरी दगा नहीं? भूख से नहीं है मारा मारी, और खुदगर्जी और लाचारी पहले कौन आगे जाए? तेरी या मेरी गाड़ी? मुंबई मुंबई।